तगन हथी तगन जे वगन आखी वे तगा आपे वत्ता वड़ तागे अवरा कत्ता ले पहाड़ करे वे आहो कड़का गलत सिरा हो सुन वेखो लोका एह विडान मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहब हो दयाले कृपा करे तसाई कर करा।

आपे भांडे साजन आपे पुरंदे, इक ने दुसमाया चुले रैन चढ़े, इक ने आली पै सामने कुपरैन खड़े, तिना सवारे नानका।

हर बसिया मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई, शब्द ना जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रसना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने, मानमुख मुगद गुबारा, आपे कर वेखे मार्ग लाए भाई, तिस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अबर ना दूजा कोई। आपे कर वेखे मार्ग लाए पाई, तिस बिन अबर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे पाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई।

गए मसकत कहा, नानक ते मुख उजले किते छुटे ना, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का।

सत संगत की तूर, सत संगत की तूर, तूर परी उड़ने तरे सत संगत की तूर, परी उड़ने तेरी सब दुर्मत मैल दवाई, बिन भगती नहीं सतगुर पाई है, बिन भगती नहीं सतगुर पाई है, बिन पागा नहीं भगत हरी, बिन भागा सतसंग ना पाइए, कर्म मिले हर नाम हरि। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके कास्त हरिया, सतसंगत की तूर, परी उड़ने तेरी सब दुर्मत मैल गवाई, माधो साधु जन देहो मिलाई, देखत दर्स पाप सब नास है, पवित्र परम पद पाए सतसंगत की तू।

के दी छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.

0: गए मसकत
1: कालू,
0: नानक ते मुख उचले केती छुटी, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जप मल सतनाम सदा सतनाम हलत पलत हलत पलत मुख उजल होई है नित तिहाई है हर पुरख निरंजना।

नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।

सर्वठार मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जन्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो दोरा। सगल द्वार कौशाड़ कै

0: का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरे तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतो मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयो तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बोला जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती स्मरक गुरु नानक लय त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां सोहन साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चार कड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु

अरे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यह संसार। राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस यार, और मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए। जो उपजय सो बिन सह, दुख कर रोए बलाए। जह ते उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चितया, राम सिमर बैराग। बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पहयान लुटावै। मान मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पहली जै। लिखै कतहे ना छूटियै, खिन खिन भूलनहार। बखसनहार बखसलै, नानक पार उतार। सुकहु टल गोर सेविया, अहनिस सहज सोभाए। दर्शन परस आए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसम दी, नूर अर सोह कुर सोह चटिया। तुद डठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी सोरठ महला पंजवा। सतगुर पूरे पाणा, ता जपिया नाम रमाणा। गोविंद कृपा तारी,

हार के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा है सोई फल पावहे, बिरथी आस न जाई। रहो कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवणा, बिखठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करता, संत साध पाए साथी, कारु गहलीन सर्व सुदीन, आप है

अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुकह टल गुर सेविए, एहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोहिए, सवना दा विसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोहिए,

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाय। माया मोह परम पै पुले, सुत धारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई।

0: जे सौ चंदा उग वह सूर्य चढ़े हजार। इते चानन होंदे गुरबिन घोरे अंधार महला पहला।
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचे छुट्टे तलवार जो संजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सो नहा। फलिए फुलिए बपड़े ही तन विच सुआ।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरा करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दया खैल करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जम्मे सो कच ने कच महला पहला
1: वडी बुढ़ाई जा बटा ना हूं वडी बुढ़ाई जा सच ने आओ वडी बुढ़ाई जाने चल थाओ वडी बुढ़ाई जाने आलाओ वडी बुढ़ाई बुझे सब पाओ वडी बुढ़ाई जा पूछना दात वडी बुढ़ाई जा पे आप नानक करना कतनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: यो जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास ना हुकम समाए लेकिन हुकम करे विनाश इकना

0: विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उछड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाज रह वेख विडान रहे विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सब प्यार कुदरत जाति जंजीरंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वह संतर कुदरत

चित चित वो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमा।

अब रखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर

0: तीर राखिया गिनका पर तहकाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज। सुदामा अपदा तीर राखिया गिनका पर तहकाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
1: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ माने, तुम मलयागर प्रगट सो भास। ध्रुव प्रहलाद कबीरत लोचन, नाम लैत उपजो जो परगास। जेहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास।
2: चित चित वो अरदास कहूं, पर कह भी न सकूं। सर्ब चिंत तुझ पासे, साध संगत हो तकूं। तेरे हुक्म पवे निशान, तो करो साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिष्ट, नाम करता मुख मेवा। अगर

इक खिन रह न सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को तारी मन आस, रहा सिमरौ नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखना।

संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पिटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजे।